0: बाकी नहीं कुछ
1: जाने हम दोनों
0: फरीदी ना मैंने
1: मिल जाएंगे एक दिन इन उम्मीदों पे ही
0: हकुना चोचोटे किनाचो कुएंदा पमोजा उकिनाचो कलीका लकिनी मोयो तुंदो उकुबाली
1: मैं और तुम गर हम हो
0: दिली के बातें दिली है जने ni maneno ya moyo yanaweza akaeleweka kwa moyo peke yake.

0: मेरा नंबर डायरेक्टली बात करना, रात को कॉल करने की जरूरत नहीं है, ओके? वैसे भी नंबर मिल गया तो डेस्को की तरह बिहेव मत करना. आई कैरी पेपर स्प्रे.
1: ओके.
0: बाय द वे नेहा,